हर किरण अपने साथ एक नया संदेश लेकर आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उजाले की एक किरण उसे बदलने का सामर्थ्य रखती है। इसी तरह जीवन में छोटी सी कोशिश भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है भोर सुहानी. प्रकृति की हर धड़कन में उस परम शक्ति का एहसास है. उगता सूरज, चहचहाते पंछी, बहती हवा और खिलते फूल. जब मन में विश्वास हो तो मुश्किलें रास्तों पर भी भीतर से एक आवाज़ आती है, चलते रहो, कोई शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा है, हाथ थामे हुए है.

जीवन रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का नाम है। रास्ते में धूप मिले या छांव, मंजिल मिले या इंतजार, कदम चलते रहें तो रास्ते खुद नए अवसरों से परिचय कराते हैं। आज की सुबह अपने आप से बस इतना वादा करें, कल से बेहतर बनने की कोशिश आज जरूर करेंगे। और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जल्द मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 5:59. మరి కాసేపట్లో ఆంగ్లంలో వార్తా ముఖ్యాంశాలు, హిందీలో వార్తా ముఖ్యాంశాలు వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौड़ में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौड़ में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच

0: अजीब है ना, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब पीछे छूट जाने का डर इतना बड़ा हो जाता है कि हमें ये दिखाई भी नहीं देता कि हम खुद कितनी दूर आ चुके हैं। कल तक जिसे पाने के लिए पूरी जान झोंक दी थी, आज वो उपलब्धि छोटी लगने लगती है। शायद तरक्की की यही पहचान है। आज भारतीय बैडमिंटन ठीक उसी मुकाम पर खड़ा है। 2009 में जब भारत में आयोजन हुआ था प्रतिष्ठित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का, तो 19 वर्षीय साइना नेहवाल पदक के लिए भारत की एकमात्र उम्मीद थी। वो भी दावेदारों की पहली कतार में नहीं थी। प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद की कहानियां बीते कल के किस्से लगते थे, लेकिन आज 2026 में जब ये कारवां लौट कर भारत आया है तो उम्मीदवारों की एक लंबी श्रृंखला है। इसीलिए तो इस टूर्नामेंट के पहले दिन सोमवार होने के बावजूद अच्छी खासी संख्या में बैडमिंटन प्रेमी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे। और फिर कोर्ट पर जो नजारा देखने को मिला वो दर्शकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं था। भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने किया एक ऐसा उलटफेर जिसे देख पूरा विश्व चौंक गया और भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे। 21 वर्षीय आयुष ने एक कश्मकश भरे मुकाबले में रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन चीन के शी यू की को मात दी। आयुष का मैच पॉइंट स्कोर करते ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मानो जोश का एक विस्फोट हुआ।
1: Fifth match point, Ayush Shetty of India has put out the defending champion, Shi Yuqi of China.
0: कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। फरवरी 2025 में 19 वर्ष की आयु में पहली बार आयुष शेट्टी का सामना शी यूकी से हुआ था इंडोनेशिया ओपन में, और उस टूर्नामेंट में भी आयुष ने शी यूकी को एक कड़ी चुनौती दी थी लेकिन उनको हरा नहीं सके थे। लेकिन इस बार अपनी गलतियों से सीख पूरी तैयारी के साथ आए थे आयुष, ऐसा उन्होंने कहा।
2: All, but I think it was a tough one for both of us. Tactically, I was much better today. The last time we played, I think he outplayed me on all aspects of the game. But I think today I was super prepared.
0: मैच के दौरान आयुष को चोट भी लगी, उंगली से खून भी बहने लगा। जब कोर्ट साइड डॉक्टर को उन्होंने बुलाया तो फैंस चिंतित हुए, लेकिन आयुष ने मैच के बाद इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी चोट गंभीर नहीं थी।
2: I think I was bleeding on my finger, so I had to go medical. I think nothing serious.
0: आयुष के हर स्मैश, हर ड्रॉप शॉट, हर पॉइंट जीतने पर गड़गड़ाती हुई तालियों से जब स्टेडियम गूंजता तो उससे उन्हें एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती।
2: The crowd was really, you know, behind me and it was giving me the energy. I was a bit tired, but I think the crowd cheering like that, I think gave me a lot of energy.
0: ऐसा ही कुछ पुरुषों के डबल्स वर्ग में अपने जोड़ीदार हरिहरन अमसा करुणन के साथ पहला मुकाबला जीतने पर एम अर्जुन ने भी कहा।
3: बहुत अच्छा था, कोर्ट के अंदर जाने से पहले वी डिडंट नो, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना क्राउड आएगा। हम लोग का नाम अनाउंस करने के बाद क्राउड चिल्लाना शुरू किया and then boosted us. I mean, हम लोग को especially when the crowd पीछे है तो हम लोग को बहुत energy और वो boost up मिलता है हर एक point के बाद। अगर point गया तो भी that cheer actually helps us. And then वो first win मिलने के बाद, I mean, both of us बहुत खुश हो। Hopefully they keep coming in for the next rounds as well.
0: अर्जुन और अमसा करुणन के सामने आयरलैंड से आने वाली स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स की जोड़ी थी जो मैच के दौरान चोट के चलते रिटायर हो गई। हालांकि उससे पहले भी मैच में भारतीय जोड़ी का दबदबा कायम था। इसके चलते अमसा करुणन और अर्जुन राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ इस वर्ग में गोल्डन बॉयज की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी को बाय मिला है। वो भी राउंड ऑफ 32 में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं महिलाओं की। जाहिर सी बात है सबसे बड़ी स्पॉटलाइट पीवी सिंधु पर होने वाली थी। राउंड ऑफ 64 में उनके सामने आयरलैंड की सोफिया नोबल की चुनौती कोई खास कड़ी नहीं मानी जा रही थी और कोर्ट पर भी वही देखने को मिला। सिंधु ने दो सीधे सेटों में आयरिश प्रतिद्वंदी को मात देकर अगले राउंड में अपनी जगह बनाई, लेकिन मैच के बाद उन्होंने बताया कि क्योंकि वो इस

0: ओपोनेंट के खिलाफ पहली बार खेल रही थी, उन्हें सतर्क रहना था और साथ के साथ कोर्ट की कंडीशंस को समझने के लिए ये मुकाबला बेहद जरूरी था।
1: Of course, I'm playing with her for the first time, and I think more than anything, it was important for me to just focus on what I do and what I play and how I play. I mean, I was excited to get onto the court happening here in India, so it was really good to get onto the court, and I could see a lot of people cheering and supporting me. I think that gave me a lot of confidence. I mean, irrespective of whoever the opponent is, it was just that I had to just play my game and give my best. It was important for me to get used to the court conditions and see how it is and how the shuttle is. So I was actually figuring out how it is and what it is. It's not like the best element. Obviously, we will play the best badminton, but like sometimes, when you actually get onto the court, you need to understand the court conditions. So today, I think that was the first thing for me that came into my mind. But I think I've managed it well, and the court conditions are pretty good.
0: Sindhu, BWF World Championships 2026 में भारत के लिए पदक की एक प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। लेकिन सिंधु का कहना है कि वो अभी उतनी दूर तक की नहीं सोच रही हैं और उनका फोकस अगले मैच पर है।
1: मेडल तो काफी दूर है, अभी मेरे लिए बस एक मैच एट अ टाइम, वन मैच एट अ टाइम, एंड मैं बस हर एक मैच में अच्छा खेलना है, 100% देना है, और अभी फर्स्ट मैच हुआ है, आई नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट मैच, एंड इट्स जस्ट वन मैच एट अ टाइम फॉर मी, सो आई जस्ट हैव टू गिव माय बेस्ट।
0: जहां एक तरफ पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल जीत चुकी दिग्गज सिंधु है, तो दूसरी तरफ कुछ युवा खिलाड़ी भी भारत का प्रतिनिधित्व इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं। युगल वर्ग में काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही हैं। उन्होंने भी शानदार शुरुआत करते हुए स्पेनिश जोड़ी को दो सीधे सेटों में मात दी। मैच के बाद सिमरन से हमने जानने की कोशिश की कि कोर्ट की कंडीशंस किस प्रकार है।
2: फर्स्ट टाइम है और सब क्राउड हमारा, एंड स्टार्ट में थोड़ा डिफेंसिव स्टार्ट किया, कोर्ट कंडीशंस थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज एक साइड से इट्स वेरी स्लो और बाकी फास्ट है, तो एडजस्ट होने में टाइम लग गया, एंड वी वर प्लेइंग वेरी डिफेंसिव। देन आफ्टर 10-12 पॉइंट्स वी चेंज द गेम, हमने डिसाइड किया हम ऑल आउट अटैक करेंगे, एंड वी आर गोना कीप इट डाउन, एक जन आगे जाके कीप करेगा और अटैक करेगा, तो हमने एंड में गेम चेंज किया, वी वर डाउन बट बहुत लेट चेंज हुआ, सो बट देन लेटर वी कैच इट ऑन एंड वी विन द मैच।
0: युगल वर्ग में ही चोट के बाद वापसी कर रही ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया। ट्रीसा की चोट के चलते कुछ अहम टूर्नामेंट्स में ये जोड़ी शिरकत नहीं कर पाई थी, जिससे काफी मायूस और हताश थी।
3: Obviously it's sad missing so much of tournaments and our rank also went little bit down. I think those situations I was mentally preparing for that. I just need to recover and just come back and play. And obviously these kind of prestigious tournaments after the injury I am playing and it makes me more feeling more happy and so excited.
0: लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरजोर वापसी की है। गायत्री के पिता और कोच पुलेला गोपीचंद कोर्ट साइड पर मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में स्पेनिश जोड़ी को 21-9 और 21-13 से इन दोनों ने मात दी। हाँ, भारतीय प्रशंसक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से इनकी हौसला अफजाई करते रहे, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिला और उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला।
4: इट्स अमेजिंग, आई मीन इट्स अमेजिंग टू प्ले इन इंडिया, द होल स्टेडियम सपोर्टिंग फॉर यू, चीयरिंग फॉर यू, इट फील्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा सर, पहला मैच खेल के इंडिया में, वो भी तो बहुत स्पेशल फील हो रहा है, और हाँ, बहुत अच्छा था फर्स्ट गेम, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं।
0: चोट से उभरने की कहानी मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर 1 आंसे युंग की भी है। दक्षिण कोरिया से आने वाली इस खिलाड़ी ने बैडमिंटन के हर एक खिताब को अपने नाम किया है। सोमवार को राउंड ऑफ 64 के मुकाबले में आसान सी जीत भी दर्ज की, लेकिन युंग का कहना है अभी वो पूरी तरह से फिट नहीं है। उसके बावजूद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने देश का परचम लहराने का उनका जज्बा है जो उनको यहाँ लेकर आया है। और मंगलवार को भारत का तिरंगा ऊंचा लहराने के उद्देश्य से BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 में अपने सफर की शुरुआत करेंगे लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा। साथ के साथ भारतीय फैंस की नजर मिक्स डबल्स पर भी होगी, जहां ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को तो बाय मिला है, लेकिन आसित सूर्या और अमृता प्रथमेश और रोहन कपूर और ऋत्विका गाड़े की जोड़ियां राउंड ऑफ 64 में अपना पहला मुकाबला खेलेगी। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और एडिटर वंदना के साथ दर्पण टिकिया और मोहम्मद शाहिद आजमी की खास रिपोर्ट।

जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हमारा शो नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन FM रेनबो 101.9। और मैं हूँ आपकी RJ हिमांजलि। तो हम बात कर रहे थे ब्रदरहुड की। तो जो मैं हूँ ना फिल्म थी वो रंगों, खूबसूरत गानों और एकदम सॉलिड रिश्तों पर बनाई गई। ये फिल्म 2004 में रिलीज़ हुई थी। फराह खान के निर्देशक में इस फिल्म ने स्टूडेंट्स, टीचर्स और कैंपस लाइफ को एक नया अंदाज़ दिया। ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, लव एंड अ कैंपस सेटिंग, दैट्स व्हाट द फिल्म मैं हूं ना वॉज ऑल अबाउट। मोर सच ट्रिविया ऑन बॉलीवुड फिल्म्स, बट ओनली आफ्टर दिस क्विक सॉन्ग फॉर यू।

हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप हमारा शो एंजॉय कर रहे होंगे। नमस्ते, हेलो, आदाब। और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 पर। तो हम बात कर रहे हैं अब कैंपस मूवीज़ की। तो कैंपस मूवीज़ क्या होती हैं दोस्तों? वो मूवीज़ जो किसी कॉलेज कैंपस पे या फिर स्टूडेंट्स जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर फिल्म की गई हो। तो जो हमारी मूवीज़ में कैंपस लाइफ यानी कॉलेज लाइफ अनगिनत बार दिखाई गई है, और इसमें सिनेमा का कोई दोष नहीं, क्योंकि कैंपस की बात ही कुछ और होती है। वहाँ की हरियाली, एनर्जेटिक माहौल, और एक ही जगह पर देश के अलग-अलग कोने से लोग, कुछ अलग ही भागती है कैंपस में हवाएं। शायद इसलिए कुछ कुछ होता है कि जेवियर्स में टीना और राहुल का मिलना, और टू स्टेट्स के क्रिश और अनन्या में हमें हर बार देखने पर हम नया ही दिखता है, हमें वो नए नए ही लगते हैं। और जो सबसे पॉपुलर कैंपस मूवी हमने रिसेंटली देखी है वो है थ्री इडियट्स। सो थ्री इडियट्स में राजू हिरानी ने जो डायरेक्ट की थी, उसमें हमें आज भी उन तीन दोस्तों की दोस्ती याद है, ना कि उनके क्लासेस, सिलेबस या फिर एग्जाम्स। तो आइए सुनते हैं टू स्टेट्स का एक गाना, कैंपस लाइफ में वापस जाते हुए।

0: मुझे सपने आने लगे। अनन्या मुझे राखी बांध रही। मैंने सोचा कि बात हाथ से निकल जाए, इसके पहले जाके मैं संभाल लेता हूँ।
1: हमें साथ में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए।
2: हाँ? अचानक क्या हुआ?
1: It's not you, it's me.
2: ये it's not you, it's me क्या होता है? Please explain.
1: Relax. हमारा divorce नहीं हो रहा है। बस हम साथ में पढ़ाई नहीं कर सकते।
2: Krish!

0: क्लास के बाद राम भाई चले?
1: नहीं, मुझे पढ़ाई करनी।
2: दोनों का झगड़ा हुआ है क्या?
1: तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या?

जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक. मैं हूँ आपकी आरजे हिमांजलि एंड आई होप आप हमारे म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे. आप सुन रहे हैं हमारा शो नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन FM रेनबो 101.9. और हम बात कर रहे थे कैंपस मूवीज़ की. तो जो मेरी फेवरेट है और जो मेरे हिसाब से कभी पुरानी नहीं होती, वो है करण जौहर की डायरेक्ट की गई कुछ कुछ होता है. जी हाँ, कॉलेज का वो रोमांस आगे जाके जो शादी में बदल जाता है. ये स्टोरी वैसे तो बहुत ही सिंपल है, पर पता नहीं कितनी बार भी देखो मन करता है एक बार और देख लें, पुरानी होती ही नहीं. तो उसी फिल्म का एक गाना आपके लिए पेश है, तो सुनते रहिए एंड इन्जॉय.

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे हिमांजलि और आप सुन रहे थे आयशा फिल्म का गाना जो कि जेन ऑस्टिन की एमा नॉवल पर, जो कि एक क्लासिक है, उस पर बेस्ड है। तो जो आयशा है वो डायरेक्ट की गई थी राजश्री ओझा साहब के द्वारा और सोनम कपूर ने बेहतरीन एक्टिंग भी की। और ऐसी कई और मूवीज़ हैं जो कि नॉवेल्स और बुक्स पे बेस्ड हैं, लिटरेचर पे बेस्ड हैं। और एक और पॉपुलर मूवी जो मेरे दिमाग में आ रही है अभी, वो है राजी। जी हाँ, डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय आलिया भट्ट। राजी इज़ अ मूवी बेस्ड ऑन हरिंदर एस सिक्का'ज़ नॉवल कॉलिंग सहमत, जहाँ की एक हिंदुस्तानी लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी देश की सेवा की थी। तो सुनते हैं उसी मूवी का एक गाना।

हेलो दोस्तों, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं हमारा शो नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9. इट्स 11:25 ऑन द स्टूडियो क्लॉक एंड आई होप आपको हमारे गाने और हमारा डिस्कशन पसंद आ रहा होगा. तो हम बात कर रहे थे ऐसी नॉवेल्स की, ऐसी बुक्स की जो कि सिनेमा में अडेप्ट हुई, जिन जिनके ऊपर मूवीज बनी. तो दो और ऐसी बहुत पॉपुलर मूवीज हैं जो कि बुक से अडेप्ट हुई हैं. एक तो है परिणीता, सैफ अली खान और विद्या बालन पे फिल्म आई गई, और दूसरी है संजय लीला भंसाली की डायरेक्ट की गई देवदास. जी हाँ, दोनों ही बंगाली नॉवेल्स से अडेप्ट हुई हैं और दोनों ही नॉवेल्स शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी हैं. जी हाँ, इतनी खूबसूरत स्टोरीज की वो आगे जाकर पूरी फिल्म्स बनी और ऑडियंस को बहुत पसंद आई. तो परिणीता का एक गाना सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत, तो एंजॉय करिए.

जी हाँ दोस्तों, हेलो वंस अगेन एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे शो नमस्ते हेलो आदाब पर, जहाँ की हम आपको अपने फेवरेट और आपके फेवरेट म्यूजिक सुना रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे नॉवेल्स और लिटरेचर की। तो कोई भी, चाहे नॉवेल्स हो या चाहे लिटरेचर हो, सिनेमा हो, ये सभी एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड एनी पीस ऑफ लिटरेचर रिप्रेजेंट्स वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इसीलिए शायद इतने सदियों सालों बाद भी वही कहानियाँ हमें आज भी भाती हैं। वैसे शेक्सपियर की बात की जाए तो उनकी स्टोरीज काफ़ी सिंपल होती हैं। उनमें कोई प्लॉट ट्विस्ट, टर्न, एक्सट्रीम सस्पेंस नहीं होता। बहुत ही सिंपल कहानियाँ होती हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें लिखी गई हैं, जिस तरह से वो लिखते थे और जो हमने पढ़ी हैं, वो इतनी खूबसूरती से लिखी गई हैं कि आज तक इंटरेस्टिंग लगती है और सिनेमा में भी अडेप्ट होती हैं। जैसे कि हैदर और हैमलेट, मैकबेथ और मकबूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो खूबसूरत लिखावट एंड ब्यूटिफुल सिनेमाटोग्राफी इज ऑलवेज प्रेज्ड एंड इज ऑलवेज प्रेफर्ड, विच इज़ वाई द ऑडियंस इन्जॉयज इट सो मच। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी

हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन. आई एम योर आरजे हिमांजलि एंड यू आर लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन एफएम रेनबो 101.9. तो आज के लिए एक फन फैक्ट कि आज नेशनल कपल्स डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है. हर साल 18th ऑफ अगस्त, 18 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है. और ये एक इनफॉर्मल, इंटरनेट बॉर्न, फ्रेंडली, पॉपुलराइज लार्जली थ्रू सोशल मीडिया टाइप ऑफ इवेंट है, डे है. तो इट सेलिब्रेट्स रोमांटिक पार्टनरशिप्स, टुगेदरनेस, रिलेशनशिप्स, फैमिली. तो आप भी जाइए, सेलिब्रेट करिए, मज़े करिए और सुनते रहिए हमारी प्लेलिस्ट, हमारा म्यूज़िक. सो इन्जॉय.

0: बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएस

0: एसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The 12th BRICS Environment Ministers meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The meeting serves as a platform for ministers, senior officers, policymakers and experts from the member countries to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, is presiding over the meeting. The theme of India's BRICS Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The Jharkhand government has cancelled the JSSC-CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by private agency TDPL. However, the demand of protesters for a CBI probe remains unresolved. The Jharkhand government announced a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mahato and other protesting students. The Enforcement Directorate ED has conducted searches at several locations in Karnataka linked to alleged Karnataka Public Service Commission KPSC paper leak scam. Former chairman of KPSC Shivshankarappa Esahukar is accused of examination paper leaks, tampering with OMR sheets and demanding bribes ranging from 70 to 80 lakhs per candidate to recruit government veterinary officers. It is also alleged that a private company acted as a middleman. In this background, ED conducted searches at the residence of Shivshankarappa and a few former members of KPSC and officers linked to a private company. The investigation is related to irregularities and possible involvement of people connected with the corrupt recruitment process. In Jammu and Kashmir, security forces today launched search operations at several locations in Udhampur, Riyasi and Kathua districts following reports of the movement of suspected individuals. Additionally, security forces conducted search operations in the Sadini forests in Riyasi and in several villages near the international border in the Hiranagar sector of Kathua. These operations are ongoing in all areas and more details are awaited. Meanwhile, General Officer Commanding-in-Chief of Northern Command, Lieutenant General Pratik Sharma, visited forward areas along the line of control in Poonch district yesterday. During the visit, he stressed the need for continued vigilance and innovative approaches to effectively address emerging security challenges. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has rejected US President

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: Welcome back once again, and yes, we are Musically Yours. Hi, I'm RJ Himanjali, back once again on our show. Namaste, hello, adab, and I hope all of you are enjoying our playlist and the discussions. Moving on, ऐसी बहुत सारी मूवीज ऐसी भी बनी हैं जो कि हिस्ट्री पे बेस्ड हैं. तो हमारी हिंदी मूवीज़ जो हिस्ट्री पे बेस्ड हैं, पॉपुलर नेम्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं अभी, वो है बाजीराव मस्तानी और जो मूवीज़ हैं पद्मावत, एंड ऐसी कई सारी मूवीज़ बनी हैं शाहरुख खान की अशोका, जो कि हमारे किंग्स पे लूजली बेस्ड है. पूरी तरह से बेस्ड नहीं, पर हाँ, आइडिया उन्हीं से उठाया गया है और बहुत ही खूबसूरत मूवीज़ बनी है और इंटरेस्टिंग है और हमारी हिस्ट्री को जो है एक तरीके से सेलिब्रेट भी करती है. तो आपके लिए बाजीराव मस्तानी का गाना पेश है, तो इन्जॉय करिए.

0: మీ పాలసీలు పేమెంట్స్ పూర్తిగా టెన్షన్ ఫ్రీగా చూసుకునే ఒకే ఒక ప్లాట్ఫామ్.
1: ఇన్స్టెంట్ ప్రీమియం పేమెంట్స్, 360 degree పాలసీ డీటెయిల్స్, క్విక్ యాక్సెస్ టు పాలసీ బెనిఫిట్స్, పాలసీ అప్డేట్స్, రివైవల్, పేపర్లెస్ ఈకేవైసీ.
2: ఎల్ఐసి ప్రతి క్షణం మీకు తోడుగా.
3: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन. तो आप सुन रहे थे बाजीराव मस्तानी का गाना दीवानी मस्तानी, जिसमें दीपिका पादुकोण ने इतना बेहतरीन डांस किया है और खूबसूरती से डांस किया है, और संजय लीला भंसाली साहब के डायरेक्शन में बहुत ही पिक्चरेस्क खूबसूरत मूवी बन के आई है. हाँ, कुछ हद तक पूरी तरह से तो नहीं, पर कुछ कुछ चीज़ें हिस्ट्री से उठाई गई हैं, जैसे कि जो बाजीराव वन थे वो मराठा एम्पायर के सातवें पेशवा थे, और उनका साहस, करेज, स्ट्रेंथ आज तक सेलिब्रेट किया जाता है. उन्होंने निज़ामों के खिलाफ उन दिनों बहुत ही तगड़ी लड़ाई लड़ी थी, और उनके बारे में उनकी कहानियाँ आज भी सुनाई जाती हैं. और कुछ और मूवीज़ जो मेरे ध्यान में आ रही हैं, एक है पद्मावत. तो जो पद्मावत है वो एक कविता, एक पोइट्री लिखी गई थी बाय मलिक मोहम्मद जैसी साहब. उन्होंने एक पद्मावत नाम की कविता लिखी थी, और उस पोएम पे बेस्ड है संजय लीला भंसाली साहब की फिल्म पद्मावत, जो कि हमारी जो एक बहुत ही वीर रानी थी राजस्थान की, उनके साहस को सेलिब्रेट करता है और उन सभी राजपूत क्षत्रानियों के बलिदान को आज भी याद रखता है. जी हाँ दोस्तों, और आप, आई होप आप हमारा शो, हमारे गाने इंजॉय कर रहे होंगे. और मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप हमारे शो को सुनना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले में जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा न्यूज़ ऑन एयर ऐप. वहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं FM रेनबो 101.9 और सुन सकते हैं फुल ऑन मस्ती एंड एंटरटेनमेंट एज पर योर लिमिट एंड कंटेंट. जी हाँ दोस्तों, अगला गाना आपके लिए, सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय.

0: Hey there! Do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.
1: हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन. स्वागत है आपका. नमस्ते, हेलो, आदाब. पर इट इज़ 12:32 ऑन द स्टूडियो क्लॉक और बहुत ही जल्द आपका फेवरेट शो, आपका अपना शो हेलो रेनबो शुरू होने वाला है, जिसके लिए मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगी. पर उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पर डिस्कशन बनता है. तो पंजाबी फोक म्यूज़िक, देखिए मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. तो बेसिकली जो ये फोक म्यूज़िक है पंजाब का, वो बहुत ही वाइब्रेंट वॉइस है पंजाब की. It is filled with rhythms of ढोल, stories, legend and tradition. तो गाने के ज़रिए बहुत सालों पहले, ज़माने पहले किसी ने बनाया होगा, क्योंकि उसका exact original creator, singer किसी को आज तक पता नहीं है. Popular music जो आज कल हम

सुनते हैं वो आर्टिस्ट जैसे कि नेहा भसीन ने पॉपुलर किए हैं, पर ओरिजिनली जो ये गाने कंपोज हुए थे और जिन्होंने गाए थे वो आज तक एक मिस्ट्री है। कहा जाता है कि ये गाने शादियों में, हैप्पी ओकेजन्स में गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, औरतें बैठ के गाती हैं और बहुत मज़ा करती हैं, मज़ा आता है। तो एक बहुत ही फेमस गाना है नहीं जाना, तो अगर आप गौर से सुने तो इतना खूबसूरत, इतने सुंदर उसके लिरिक्स हैं कि जो दुल्हन है वो अपने मायके, अपने ससुराल वापस जाने से मना कर रही है, बोल रही है मैं अपने मायके में ही रहूंगी जब तक कि मेरे हस्बैंड खुद मुझे लेने नहीं आते। तो ना तो वो अपने फादर इन लॉ के साथ जाती हैं, ना किसी और रिलेटिव के साथ जाती हैं। वो एक बहुत ही फन और खुशनुमा तरीके से बोलती हैं कि नहीं, जब वो मेरे हस्बैंड आएंगे तभी मैं वापस मायके से ससुराल जाऊंगी। तो सुनिए, आप भी सुनिए थोड़ा पंजाबी फोक म्यूजिक।

रिलेटिव के साथ जाती हैं, वो एक बहुत ही फन और खुशनुमा तरीके से बोलती हैं कि नहीं, जब वो मेरे हस्बैंड आएंगे तभी मैं वापस मायके से ससुराल जाऊंगी। तो सुनिए, आप भी सुनिए थोड़ा पंजाबी फोक म्यूजिक।

जी हाँ बिल्कुल, ठुमक ठुमक जानी या माइये दे नाल, बिल्कुल। मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही वापस ससुराल जाऊंगी। और दोस्तों, औरतों का और स्पेशली खासकर जो ब्राइड्स का, दुल्हन का एक 16 श्रृंगार जो कहा जाता है, जिसमें कि कई सारी ज्वेलरी होती है, काजल होता है, सिंदूर होती है, बिंदिया होती है, उसे जो जब ब्राइड तैयार होके आती है तो एक अलग ही रूप रंग चढ़कर नज़र आता है। इसे भी हिंदी सिनेमा ने पिकअप किया है। हमारे कई गाने हैं जो कि औरतों के इन 16 श्रृंगार को खूबसूरती से दर्शाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। और कई गाने हैं जो पायल, बिंदिया, चूड़ियाँ, कंगना पर बने गए हैं और हमने, ऑडियंस ने बहुत पसंद भी किए हैं। तो एक गाना पायल पे जो बहुत ही फेमस है आपके लिए, मैं प्ले करने वाली हूँ, तो प्लीज़ एंजॉय करिएगा।

अपने भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते के बारे में हमें बताइए कोई एक बात, कोई इंटरेस्टिंग बात, और हम ज़रूर सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए सुनिए हमारा अगला सॉन्ग, अगला म्यूज़िक आपके लिए।

0: हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, हमारा सेगमेंट हेलो रेनबो शुरू हो चुका है और हमारे साथ है हमारे पहले कॉलर सर। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम
0: गुड आफ्टरनून सर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
1: जी। आ रहे मैडम,
0: जी सर, बताइए
1: मैं
0: अपना नाम
1: नरसिम्हा रेड्डी
0: बताइए,
1: प्रेमा जी।
0: अपना नाम बताइए सर।
1: मेरा नाम नरसिम्हा रेड्डी
0: जी
1: प्रेमावती पेठ राजेंद्र नगर से।
0: जी
1: जी
0: सर, जी सर, हाँ, हमारे क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। आप जो हमारे सिबलिंग्स का रिलेशनशिप होता है, भाई बहनों का, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: बचपन का है आपका मैडम?
0: कभी का भी, बचपन का, अभी का, भाई बहनों के बीच नोक झोंक।
1: वो तो मैडम भाई बहन का तो रिश्ता बहुत, बोलना बोले तो बात बहुत ज्यादा हो जाते मैडम।
0: जी,
1: वो
0: कोई
1: जो
0: भी एक
1: बचपन का,
0: किस्सा। हाँ
1: बचपन की बात तो अलग रहता। बचपन की क्या बात, मेरे छोटे भाई मेरे से क्या, जो भी कपड़े या जूते कुछ भी लाया तो
0: जी
1: लड़ से पहले उन्हें मैं लेता। मेरे 1-2 साल छोटा था खाली, वो
0: जी जी
1: लड़
0: जी
1: लड़ के मेरे पहले मैं ही पहन तू बोल के बोलता था। अभी तब बड़ा होने के बाद भी वही हालत थी।
0: जी
1: और
0: जी
1: बहन से ऐसा रिश्ता था कि जैसे घर में कुछ भी बनाए पहले
0: जी
1: मैं खाना छीन के खाना,
0: जी
1: और लड़ाई झगड़े चलते रहता था बचपन में।
0: जी जी जी
1: अब वो चीज लड़ाई झगड़ा का बचपन का छोड़ के बड़े होने के बाद ऐसा मोहब्बत हो गया हम लोगों को। तो जैसे कि सुबह में उठ के वो बहन है जैसा फोन मेरे को करना, मैं उनको करना, बगैर
0: जी
1: फोन करके नहीं रहते थे।
0: जी
1: और भाई
0: जी
1: से भी रिश्ता ऐसा, एक की मदद, एक को कुछ भी मुसीबत आया, कुछ भी आ गया, क्या भी आ गया, हाल चाल पूछना, कुछ भी जो कुछ होता अपने से हेल्प करना वो करना सब कुछ चलता है मैडम। वो तो आज भी ऐसी से हमारा। तो
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल सही
1: थैंक
0: कहा
1: यू
0: आपने
1: मैम।
0: सर, थैंक यू सो मच हमें फोन करने
1: ओके
0: के लिए।
1: मैडम, थैंक
0: थैंक
1: यू।
0: यू, थैंक यू जी। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। हेलो, हेलो,
1: हाँ गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून, आपका अपना नाम बताइए सर।
1: हाँ मेरा नाम है मैडम सतीश कुमार मैडम, फ्रॉम
0: जी
1: अलवा या पनौर
0: जी
1: कॉलोनी।
0: जी सर, चपड़नी सर। जी सर, आपने हमारा सवाल सुना, आप जवाब देना चाहेंगे?
1: हाँ
0: जी
1: मैडम, भाई बहन के बारे में और राखी पूर्णिम के बारे में बात पूछा था। हाँ
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर।
1: तो हम 8 मेंबर्स ब्रदर्स हैं मैडम,
0: हाँ
1: दो दो सिस्टर है, पूरा जुमला 10 मेंबर्स है।
0: अच्छा।
1: और एक साल जो हम करीमार में रहे थे, अब पूरा लोग हैदराबाद में शिफ्ट हो गया, तो
0: अच्छा।
1: हमारा बहन भी दोनों हैदराबाद में शिफ्ट हो गया। और ये राखी फेस्टिवल को आके राखी बांध के जाता, रिमेनिंग जो करीमार में है वो पोस्ट पे भी जाते थे। मगर
0: जी जी जी
1: जो बचपन का है जो अच्छा है मैडम, 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, नीचे बैठ के पूरा बत्तू लगा के राखी बन के उसका पाम छू के ब्लेसिंग लेके, वो हमारे माँ बाप के दिनों में 8-9 बजे स्कूल जाने से पहले बन लेके स्कूल जाता था मैडम।
0: जी
1: उतना वो मेमोरीज फिर नया था मैडम लाइफ में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: अब
0: सर।
1: पूरा लोग शादीशुदा हो गया, पूरा बच्चा है, पूरा बिजी लाइफ हो गया, और टाइम पे आते फोन पे आते बोल के बोलते, एक
0: जी
1: मर्तबा आते एक मर्तबा नहीं आते, वो
0: जी
1: अलग बात है मैडम। बचपन का अच्छा लाइफ मेरे को याद है मैडम। ओके
0: जी सर, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
1: मैडम,
0: थैंक
1: नमस्ते
0: यू,
1: मैडम।
0: नमस्ते सर। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर, अपना नाम बताइए प्लीज।
1: ना पेर वॉलेट प्रभा कर रहा हूँ फ्रॉम बेंगलोर।
0: ओके, नमस्कार सर,
1: नमस्कार, कैसी है मैम?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए सर, हमारा सवाल का जवाब दीजिए प्लीज।
1: हाँ, हमारा भाई तीसरा भाई है
0: अच्छा, हाँ
1: वॉलेट रामकृष्ण बोल के,
0: ओके।
1: छोटा बच्चा, बचपन से मिलजुल के रहते। अभी बड़ा हुआ तो भी दिन छोड़ के दिन फोन करता उन्हें,
0: जी
1: और हफ्ते को एक बार आते रहता जाते रहता देखने के लिए हमारे को।
0: जी
1: उतना एक फ्रेंड भी नहीं होता।

0: है उतना।
1: जी जी जी
0: भाई ऐसा रहता, वॉलेट रामकृष्ण है उनका नाम,
1: जी जी सर
0: हाईटेक सिटी में रहता।
1: जी
0: हाँ बहुत बढ़िया है,
1: जी सर जी
0: थैंक यू वॉलेट प्रभाकर, नमस्कार।
1: थैंक यू सर। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो। ओके आई थिंक कॉल कट हो गया है। वी विल प्रोसीड।
2: ईरानी चाय,
3: बन मस्का,
2: हैदराबादी बिरयानी,
3: टंगड़ी कबाब,
2: कुर्बानी का मीठा,
3: शहदूद मलाई।
2: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
3: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
2: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
3: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
2: इट्स नॉट जस्ट फूड,
3: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
2: जश्न ए हैदराबाद।

जी हाँ दोस्तों, तो आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो। और बातों के बीच में मुझे ध्यान आया कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिनेमा में, जो कि कई बार देखी जा चुकी है, वो है खाना। तो एक जो खाना है वो

जी हाँ दोस्तों, तो आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, और बातों के बीच में मुझे ध्यान आया कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिनेमा में, जो कि कई बार देखी जा चुकी है, वो है खाना। तो एक जो खाना है वो स्टोरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। तो अगर हम पॉपुलर सिनेमा के नामों पर जाएं तो दावत-ए-इश्क एक मूवी आई थी जिसमें कि हैदराबादी और लखनवी क्विजीन जो दिखाई गई थी, अगर आपने देखा और आपके मुंह में पानी नहीं आया तो आपने क्या ही देखा, क्या ही फूडी रहे आप। और हाँ, एक और मूवी आई थी इरफान खान साहब की, लंच बॉक्स। तो जो द लंच बॉक्स थी, जहाँ पे गलत डिब्बा ऑफिस में गलत इंसान के पास जा रहा था, फिर भी एक सही कनेक्शन बन जाता है, उसमें भी जो डिशेस दिखाई गई हैं उन्हें देखकर मुंह में पानी ही आ जाता है। तो हाँ दोस्तों, सुनते हैं और आगे के गीत गाने, और आप एंजॉय करते रहिए।

जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक. आई एम योर आरजे हिमांजलि और इट्स 1:48 ऑन द स्टूडियो क्लॉक. हमारा शो आज का ऑलमोस्ट अपने अंतिम समय पर है, ख़त्म होने वाला है, पर दूसरे आरजे आ गए हैं तो आपका एंटरटेनमेंट नहीं रुकेगा. तो बने रहिए हमारे साथ और आई होप आपने एंजॉय किया हो. तो सुनते रहिए हमारा म्यूज़िक एंड थैंक यू.

FM 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:30 और 20 सेकंड हो रहे हैं और अब पेश खिदमत है आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: और ब्रिजां बनाते जा रहे हैं। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियां भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे हैं, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रही नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है। तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
1: सामीन, जब हम रात के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बेशुमार सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सितारे क्या हैं? हमारी ज़मीन कायनात में कहाँ वाक़े है, सूरज क्या है और हमारी कहकशें का नाम क्या है? हमारी ज़मीन एक सैयारा है और ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। सूरज खुद एक सितारा है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। हमारा निज़ाम शमसी दूधिया रास्ता यानी मिल्की वे नामी कहकशां का एक छोटा सा हिस्सा है। कायनात बहुत वसी है, इसमें बेशुमार सितारे, सैारे, कहकशाएं, गैस, गर्द गुबार और खला मौजूद हैं। आज हम इसी दिलचस्प कायनात के बारे में कुछ नई और हैरत अंगेज़ मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए इल्म के इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। पेश खिदमत है बेदारी कायनात सिलसिला तहरीर पेशकश जनाब मोहम्मद मुनव्वरुद्दीन साहब की, समाप्त कीजिए।
2: हमारे अतराफ कायनात यूनिवर्स फैले हुए हैं और ये एक कायनात बेहिसाब कहकशानों से बनी है। हर कहकशां लाखों करोड़ों सितारों का मजमा होती है। ये सितारे ग्यासों से भरे मुख्तलिफ जजामत की खुद से मुनव्वर फलकी अज़ाम हैं। इनके मुकाबले में सैारे प्लैनेट्स ऐसे फलकी अज़ाम हैं जो खुद से रोशन नहीं होते। सूरज खुद एक मामूली सा सितारा है, लेकिन ज़मीन से इसके ताल्लुक़ की बिना पर यह ज़बरदस्त अहमियत का हामिल है। हमारी ज़मीन एक सैारा है और निज़ाम शमसी के दीगर सैारों में सूरज से फासले के लिहाज से ये तीसरे मुकाम पर वाक़े है। सूरज और सैारों के दरमियान वसी खला स्पेस हायल है। सूरज और ज़मीन के दरमियान औसत फासला तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है। साख्त के लिहाज से ज़मीन अंदरूनी और बैरूनी परतों पर मुश्तमिल है। कुर्रे फिजा, एटमॉस्फेयर, कुर्रे आब, हाइड्रोस्फेयर, कुर्रे हिजर, लिटोस्फेयर ज़मीन की तीन अहम परतें हैं। कायनात, हमारे अतराफ कायनात मौजूद है। कायनात छोटे से छोटे ज़र्रात से लेकर दियो खामत की किस्म के मादे से बनी है। ज़मीन सूरज, चाँद, सितारे, कहकशां, नूर, खला वगैरह से मिलकर ये कायनात तशकील पाई है। मुख्तसर ये कि कायनात मादा, तवन्नाई और खला पर मुश्तमिल है। आइए ये मालूम करें कि मादा मैटर और तवन्नाई एनर्जी और खला स्पेस से क्या मुराद है। मादा कीमियत मास रखता है और जगह घेरता है। ये मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है, यानि ठोस सॉलिड, माया लिक्विड और गैस। इसके अलावा मादे की एक और हालत प्लाज्मा है, जिसमें मादा रवान दार गैसी हालत में पाया जाता है। तवन्नाई दरअसल काम करने की सलाहियत का नाम है और ये मुख्तलिफ शक्लों में पाई जाती है, जैसे नूर, हरारत या बर्फ वगैरह। कायनात की खाली जगह जो किसी भी किस्म के मादे से पूर नहीं होती, खला कहलाती है। कायनात के मुतालिबे में अज़ाम फलकी की साख्त, जसामत, उनकी मशमूलात और खला में उनके मुकाम का मुतालबा शामिल होते हैं। साइंस के इस शाख को फलकी कहते हैं। कहकशाने, कहकशाने करोड़ों सितारों का मजमा होती है। कहकशानों में सितारों के अलावा उड़ती हुई गैसेस, धुआं और ठोस अज़ाम जैसे सैारे, सैारचे वगैरह भी मौजूद होते हैं। हमारी अपनी कहकशां जिसमें निज़ाम शम्स वाक़े है, दूधिया रास्ता, द मिल्क वे कहलाती है। आइए ये मालूम करें कि सितारे, सैारे और तौब क्या है। सितारे, स्टार्स, अपने तौर पर रोशन फलकी अज़ाम हैं। मसलन हमारा सूरज

0: की शक्ल में लौटा देती है। इस अमल को आबी गर्दिश वाटर साइकिल कहते हैं। गुर्रे हिजर अर्जियात जोलॉजी के तमाम शोबों में मुतालबे का अहम मकसद ज़मीन की इब्तिदा इर्तिखा और इसके सतह का मुतालबा करना है। ज़मीन का वो ठोस हिस्सा जो बर्रे आज़मों और समंदरों से नीचे पाया जाता है कुर्रे हजर लेटोस्फेयर कहा जाता है। ज़मीन का ये हिस्सा मुख्तलिफ किस्म के हजरात या चट्टाने रॉक्स और मादनियात मिनरल्स पर मुश्तमिल है। ज़मीन की सबसे बालाई परत बड़ी हद तक चट्टानों और मादनियात से तश्कील पाई है जिसको कुर्रे हजर कहते हैं। हजरात या चट्टाने मादनियात का मजमा होती है। मादनियात ऐसे गैर नामियाती मरकबात होते हैं।
1: समीन आपने समाप्त किया बेदारी कायनात, जिसमें आज हमने कायनात सितारों सैारों कहकशाओं सूरज और निज़ाम शमसी के बारे में दिलचस्प मालूम हासिल की। हमने जाना कि हमारी ज़मीन एक सैारा है, सूरज एक सितारा है और हमारा निज़ाम शमसी दूधिया रास्ता यानी मिल्की वे कहकशा का हिस्सा है। कायनात बहुत बड़ी और हैरत अंगेज़ है और इसके बारे में जितना जानते जाएं उतने ही नए सवालात हमारे सामने आते हैं। यही सवालात हमें मज़ीद जानने और सीखने की तरफ ले जाते हैं। तो इल्म का ये सफ़र जारी रखिए, आसमान को देखिए, सवाल कीजिए और नई चीज़ें सीखते रहिए। ये थी जनाब मोहम्मद नूरुद्दीन साहब की तहरीर पेशकश।

तो सामीन, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और अब वक्त हुआ चला है हमारे दिलकश यादगार और मौसीकी से सजी महफिल गीत सुरीले गाता जाका। मौसीकी वो जबान है जो दिलों के फासले मिटा देती है, एहसासात को नगमों में ढाल देती है और जिंदगी के हसीन लम्हों को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। यही वजह है कि दुनिया की हर तहजीब में मौसीकी को खुशी, मोहब्बत और उम्मीद की अलामत समझा जाता है। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं खूबसूरत हिंदी फिल्मी नगमों का एक मुंतखब गुलदस्ता, जहां हर गीत अपने अंदर एक कहानी, एक एहसास और एक याद लिए हुए हैं। आज की हमारी खसूसी पेशकश का उनवान है दिल की बात गीतों के साथ, यानी वो बातें जो कभी हम किसी से कह नहीं पाते, वो जज्बात जिन्हें अल्फाज का लिबास नहीं मिलता और वो यादें जो दिल के किसी कोने में खामोशी से बसी रहती हैं। आज यही एहसासात गीतों के ज़रिए आप तक पहुंचेंगे, तो आप जहां कहीं भी रहें हमारे साथ रहिए, क्योंकि अगले चंद लम्हों में हम कभी मोहब्बत की बात करेंगे, कभी यादों की, कभी जुदाई की और कभी उन खूबसूरत रिश्तों की जो हमारी ज़िंदगी को माना देते हैं।

सामिन, मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे शायद दुनिया का कोई भी लफ्ज़ मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकता। मोहब्बत कभी एक नज़र से शुरू होती है, कभी एक मुस्कुराहट से, कभी किसी की आवाज़ दिल में उतर जाती है, और कभी किसी की मौजूदगी हमारी पूरी दुनिया बदल देती है। दिलचस्प बात यह है कि मोहब्बत का आगाज़ अक्सर खामोशी से होता है। इंसान कुछ कहता नहीं, मगर दिल बहुत कुछ कह रहा होता है। आंखें कुछ तलाश करती हैं, दिल किसी के इंतज़ार में धड़कता है, और एक मामूली सी मुलाकात भी यादगार बन जाती है। फिल्मी गीतों ने मोहब्बत की इसी कैफियत को निहायत खूबसूरती से पेश किया है। कभी गीत पहली मुलाकात की खुशी बयान करता है, कभी दिल की बेकरारी, और कभी उस शख्स का जिक्र करता है जिसके बगैर जिंदगी अधूरी सी महसूस होती है। एक शेर देखिएगा कि कभी लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं एहसास बयान करने में, कभी लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं।

एहसास बयान करने में तब एक गीत ही काफी होता है दिल की बात कहने में। तो आइए दिल की बात गीतों के साथ की इस खूबसूरत कड़ी में मोहब्बत की पहली धड़कन को महसूस करते हैं और सुनते हैं एक ऐसा दिलकश नगमा जो शायद आपको भी अपनी किसी खूबसूरत याद में ले जाए। आइए सुनते हैं।

सामीन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद का प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। और इस वक्त हमारी खसूसी पेशकश दिल की बात गीतों के साथ जारी है। मोहब्बत और ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं, मगर हमारी यादों से कभी दूर नहीं होते। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनके साथ गुजारा हुआ कोई छोटा सा लम्हा भी दिल में महफूज रह जाता है। कभी ऐसा होता है कि हम किसी जगह से गुजरते हैं और अचानक कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाती है, तो कभी कोई खुशबू, कोई तस्वीर और कभी कोई गीत हमें बरसों पीछे ले जाता है। शेर देखिएगा कि कुछ लोग दिल में इस तरह उतर जाते हैं, कुछ लोग दिल में इस तरह उतर जाते हैं कि फासले बढ़ जाएं तो भी याद आते हैं। तो आइए आज का अगला नगमा इसी ख़ास शख्स, उसी खूबसूरत याद और उसी एहसास के नाम करते हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद दिल में ज़िंदा रहता है। आइए सुनते हैं।

सामीन, आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाथा जा, और हमारी आज की खसूसी पेशकश है दिल की बात गीतों के साथ। यादें भी अजीब चीज़ हैं, वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, जगहें बदल जाती हैं, लेकिन कुछ यादें दिल में वहीं की वहीं रहती हैं। बचपन की शरारतें, स्कूल के दिन, दोस्तों के साथ गुजारे हुए लम्हे, पहली बार किसी गीत को सुनने की खुशी, ये सब हमारी ज़िंदगी का वो ख़जाना है जिसे वक्त हमसे छीन नहीं सकता। और जब कोई पुराना गीत सुनाई देता है तो यूं लगता है जैसे वक्त की घड़ी चंद लम्हों के लिए पीछे चली गई हो। शेर देखिएगा कि यादें भी खुशबू की तरह होती हैं, यादें भी खुशबू की तरह होती है, छू लो तो हाथों में रह जाती हैं। आइए यादों के इसी खूबसूरत सफर पर चलते हैं और सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो शायद आपको भी आपके गुजरे हुए किसी हसीन लम्हे तक पहुंचा दे। आइए सुनते हैं।

सामीन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद का खास प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा, और साथ में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं दिल की बात गीतों के साथ। मोहब्बत में जहां मुलाकात की खुशी होती है, वहीं जुदाई का दर्द भी होता है। कभी कोई अपना दूर चला जाता है, कभी हालात फासले पैदा कर देते हैं, और कभी रास्ते अलग हो जाते हैं। जुदाई सिर्फ किसी शख्स से दूर होने का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी ये अपने गुजरे हुए वक्त, अपने शहर, अपने दोस्तों और अपनी पुरानी जिंदगी से दूर होने का एहसास भी होता है। फासले बढ़ गए तो क्या हुआ? फासले बढ़ गए तो क्या हुआ? यादों का रास्ता आज भी वही है। फिल्मी नगमों ने जुदाई की इसी कैफियत को बड़ी खूबसूरती से आवाज़ दी है। तो आइए इस दर्द को महसूस करते हैं और सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो जुदाई के एहसास को अपने अंदर समेटे हुए है। आइए सुनते हैं।

है जिसमें इंसान हर आहट पर चौंक जाता है कि शायद वो आ गया जिसका इंतजार था। किसी फोन की घंटी, किसी पैगाम की उम्मीद या किसी मुलाकात का वादा, ये सब इंतजार को और भी गहरा बना देते हैं। इंतजार की भी अपनी एक कहानी होती है, इंतजार की भी अपनी एक कहानी होती है। हर गुजरती घड़ी कुछ कहानी होती है। आइए इसी इंतजार, उम्मीद और बेकरारी के एहसास के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत नगमा।

सामीन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद का प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा, और हमारी खसूसी पेशकश है दिल की बात गीतों के साथ। ज़िंदगी में रिश्ते बहुत मिलते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद मुंतखब करते हैं। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो हमारी खामोशी भी समझ ले और हमारी खुशी में हमसे ज़्यादा खुश हो। कभी दोस्तों के साथ गुज़रा हुआ एक छोटा सा लम्हा भी पूरी ज़िंदगी की खूबसूरत याद बन जाता है। दोस्त वो नहीं जो महफिल में साथ हो, दोस्त वो नहीं जो महफिल में साथ हो, दोस्त वो है जो तन्हाई में याद आए। तो आज का अगला नगमा उन तमाम दोस्तों के नाम जो हमारी ज़िंदगी के सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं, आइए सुनते हैं।

0: ऐ दोस्त, हमने तर्क के मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी। कभी जिंदगी में हालात, फासले या इख्तलाफात इंसान को अपने अजीजों से दूर कर देते हैं, मगर सच्चे ताल्लुकात दिल से मुकम्मल तौर पर मिटते नहीं। वक्त गुजरने के बाद भी इंसान को एहसास होता है कि बाज़ रिश्ते ज़िंदगी की हकीकी दौलत होते हैं। इसलिए अना, ज़िद और ग़लत फहमियों को इतना न बढ़ने दें कि कीमती ताल्लुकात हमेशा के लिए टूट जाएं। सच्चे रिश्तों की कदर उनके बिछड़ जाने से पहले कीजिए। इख्तलाफ हो तो माफ़ी और दरगुजर का रास्ता इख्तियार कीजिए। मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि खैरख्वाही और एहतराम का नाम भी है। इंसान को कभी अपनी अना को रिश्तों से बड़ा नहीं बनाना चाहिए। ज़िंदगी में दौलत, शोहरत और कामयाबियाँ दोबारा हासिल की जा सकती हैं, मगर मुखलिस इंसान और सच्चे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। इसलिए मोहब्बत, खलूस और माफ़ी को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, ताकि कभी ज़रूरत का एहसास हसरत में तब्दील ना हो जाए।
1: सामीन, अभी आपने पयाम शब जनाब जैदी साहब की आवाज़ में समाप्त किया। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान मशकूर अहमद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 10:59 हो रहे हैं और कुछ ही देर में दिल्ली से हिंदी और अंग्रेज़ी खबरें सुनाई जाएंगी।

0: bad. भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे।

0: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. BRICS nation today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market standards. He said it can be done by educating farmers about various modern technical tools. The minister was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council for Agricultural Research, ICAR, in New Delhi today. The minister also administered the Saptadhara of Shakti Pledge to officials of both ministries in national capital. Mr. Chauhan said, through Shakti Ki Saptadhara, Prime Minister Narendra Modi has presented a clear roadmap

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,200. रीजनल रूरल बैंक्स रजिस्टर ओवर 10% राइज इन ग्रोस लोन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख. सेंसेक्स में लगभग 500 अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,200 अंक से नीचे पहुंचा. और ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में पिछले एक साल के दौरान 10% से अधिक की वृद्धि और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल. और तमाम खबरों पर चर्चा के लिए आज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
0: वार्म वेलकम सुषमा.
2: थैंक यू राजेश. थैंक यू निखिल.
0: बिफोर वी प्रोसीड, हियर इज अ डिस्क्लेमर.

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में लगातार तीसरे दिन सुस्ती आई, जबकि निफ्टी छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक आज 0.4% नीचे आए, जबकि स्मॉल कैप में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। इससे पहले आज सुबह कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से बाजार लाल निशान के साथ खुले थे।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन द नेगेटिव टेरिटरी टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइन 493 पॉइंट्स और 0.63% टू क्लोज एट 77,235। द निफ्टी स्लिप्ड 133 पॉइंट्स और 0.55% to settle at 24,155. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.4%, while the small-cap 100 index remained unchanged. The Sensex extended its losing streak for the third consecutive session, while the Nifty closed lower for the sixth straight day. While the markets opened lower amid weak global cues, both indices remained under pressure and traded in a range-bound manner through most of the session. However, towards the fag end of the session, the markets extended their decline amid selling pressure ahead of the weekly expiry of Nifty futures and options contracts.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयरों में आज नुकसान दर्ज हुआ। सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में एशियन पेंट्स 2.4%, इन्फोसिस 2% और एचसीएल टेक 1.9% शामिल थे। वहीं इसके उलट एक्सिस बैंक में 0.9%, पावर ग्रिड में 0.7% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई।
0: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द बीएसई 21 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड विद लॉसेस। Among the top laggards, focused IT declined 1.8%, information technology dropped 1.7%, and realty lost 1.3%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt advanced 0.3%, hospitals as well as healthcare increased by 0.25%, and auto added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 1,930 advanced and 216 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ। सुषमा, एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है।
2: थैंक यू
1: सुषमा। आज अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो दोनों सूचकांक दबाव में रहते हुए ज्यादातर समय तक एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन कारोबार के आखिरी सत्र में निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी से पहले बिकवाली के दबाव के कारण बाजार में गिरावट देखी गई। और साथ में अगर हम पिछले 2 हफ्ते की बाजार की चाल देखें और अब तक के 2 दिन के इस हफ्ते का कारोबार देखें तो गिरावट का जो रुख है वो क्या कहानी कहता है हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए बात यह है कि ये जो हमारा हमारे स्टॉक मार्केट्स जो हैं, मैं हमेशा कहती हूँ वो सेंटिमेंट ड्रिवन है और इस वक्त सेंटिमेंट जो है वो इसके ऊपर जो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में यूएस और ईरान के बीच में उसके बारे में सेंटिमेंट जो सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में है उनकी सोच उनके ऊपर है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो तेल के दाम है वो ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, वो वॉलेटिलिटी बहुत हो रही है आज के दौर में। एकदम से वो तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, दे हैव रीच्ड $91। तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, हमारी 85% ऑफ आवर फ्यूल रिक्वायरमेंट हम बाहर से ही मंगवाते हैं, तो इससे जो इन्वेस्टर्स की थोड़ा सा वो रुख बदल गया है ये पिछले 2-3 हफ्तों से। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है ये जो

0: मेजर कॉन्सेप्ट है। और तेल के अलावा भी बाकी सारी जो काफी सारी प्रोडक्ट जो वहां से आती है वेस्ट एशिया से, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स तो का तो ब्लॉकेड है, बाकी रेड सी में से के बीच में से मर्चेंट शिपिंग के भी वहां पर तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि यमन में से वहां अटैक हो रहे हैं। तो एक तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा ये है कि सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स को छोड़ के अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, वो वहां के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं और उनके जो रिटर्न्स हैं वहां पर ज्यादा बेहतर हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं, मतलब और भी मैं चीजें गिना सकती हूँ लेकिन बहुत टाइम लगेगा आगे।
1: मुनाफा वसूली का कैसा रुख देखने को मिला है इन दिनों के दौरान, खासतौर पर अगर डीआईएस की हम बात करते हैं तो?
0: खासकर हाँ जी,
1: डीआईएस की घरेलू निवेशकों की बात करते हैं तो?
0: हाँ बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुकिंग की भी बात है, लेकिन हमारे जो घरेलू निवेशक हैं वो ज्यादातर इस वक्त वो अभी भी इनकी जो फेथ है हमारी मार्केट में वो जारी है, और इसी वजह से हालांकि फॉर एफआईआईज हमें छोड़ के जा रही है बड़े दबादब इस वक्त जा रही है, लेकिन बीच में अभी हाल ही में तो वापस भी आ रही थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, क्योंकि यहाँ की जो असेसमेंट ये था कि वैल्यूएशन अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं
1: जी।
0: तो अब हम वापस आ सकते हैं, लेकिन अब फिर जो रुख बदल गया है और वो चले गए हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त तो खैर प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रही है, लेकिन वैसे वो इतना ज्यादा वो बेरिश ट्रेंड्स नहीं है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के।
2: सुषमा, आईटी वाज अमंग द बिगेस्ट लैगार्ड्स टुडे, सो इज द वीकनेस लिंक्ड टू वैल्यूएशंस, यूएस डिमांड कंसर्न्स, और द करेंसी फैक्टर्स, और प्रॉफिट बुकिंग?
0: आई वुड से दीज आर लॉन्ग टर्म इश्यूज एज फार एज आईटी सर्विसेज आर कंसर्न्ड, द परसेप्शन दैट यू नो आईटी सर्विसेज आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू मैच द यू नो मैच द काइंड ऑफ एआई technology that has sprung up in the United States. So I think that it is linked to that. And the fact that, of course, that in America, things, the stock markets are rebounding just now at a time when ours are going down. We have to remember that for America, when for the U.S., when oil prices go up, while it might be uncomfortable for consumers, the fact is that they, as an exporting nation, producing an exporting nation, for them, it comes as a benefit. So the situation is very different. And coming back to IT services, the perception has been for quite some time that there is going to be a problem with the IT services industry because of the introduction of AI. And I think that's not really so. You're going to have so many more applications of AI, and it's going to be these IT services companies which are going to be doing that kind of work on applications.
2: Okay. Auto and pharma, Sushma, showed relative resilience today. Is this defensive positioning or evidence of sector-specific strength?
0: I would say it's sector-specific strength because, you know, pharma is definitely one of our strongest exports, one of our strongest sectors. And auto, of course, as you know, you must have read the reports, the demand has risen exponentially, and even in rural areas, that was the area that people were worried about, two-wheelers, there also the demand has gone up. So auto is an area that is certainly doing well. Even in exports, auto is doing well. So certainly, I think that is a strength for both these areas.
2: Okay. And also the Indian equities, as you very rightly pointed out, they came in under pressure today with the Sensex falling 493 points and the Nifty, extending its losing streak. Now, is this a temporary bout of risk aversion, or is the market signaling a more meaningful change in trend?
0: Well, that's very difficult to say right now, because we would have to see the market for a while. I know, of course, the market has been, going down in the last few weeks. There has been a bearish trend. But I think more of what is happening in the market is a reaction to external developments. and the perceptions that, you know, what is happening between US and Iran.

0: could have an adverse effect on our growth.
1: सुषमा, थोड़ा सा अगर पीछे जाकर के हम आपसे बात करें तो जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, 707 अरब अमेरिकी डॉलर तक के हम पहुंच चुके हैं. लेकिन यहां पर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट की जो बात है, विदेशी मुद्रा का एक इनफ्लो उसमें आया है, तो इससे आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब लिक्विडिटी बढ़ाने की बात है और स्टेबिलिटी होनी चाहिए रुपए में और देश की एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने की लगातार बात हम कर रहे हैं.
0: देखिए, ये जो स्कीम बनाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उससे बहुत फायदा हुआ है. मतलब इनफ्लोज की बात आपने की, ये एनआरपी की वजह से हुई है. और लेकिन उससे इतना सपोर्ट रूपी को नहीं मिला जितना सोचा जा रहा था.
1: जी
0: और रूपी डिप्रिसिएशन, खैर हम समझ सकते हैं कि वो कम, मतलब हॉल्ट हो गई है, बंद हो गई है डिप्रिसिएशन, लेकिन वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ है रूपी. तो ये थोड़ी सी शायद आरबीआई माइट बी लिटिल कंसर्न अबाउट दैट. पर मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे, एक तो हमारे रिजर्व्स बहुत बड़ी बहुत अच्छे हैं इस वक्त, और दूसरी एक बहुत अच्छी बात है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ही छोटा है इस वक्त. मेरे ख्याल ये जो जून के क्वार्टर में, अप्रैल में, जून क्वार्टर में, जिसमें ये अभी ये वॉर हुआ था और जिसमें इतना डर लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा बहुत महंगा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल 0.6% ही हुआ है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त.
1: सुषमा, इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जो इस तरह के कदम उठाए गए हैं आरबीआई की तरफ से, सरकार जो भी प्रयास कर रही है उन्हें हम मतलब किस तरह से देखती हैं, क्या ये इस तरह के कदम आगे भी उठाए जाने की संभावना रहती है जहां पर स्टेबिलिटी देने की बात हम करते हैं तो?
0: हाँ, देखिए, आरबीआई ये वक्त वक्त पर ये कदम उठा देती है. अभी ये एफसीएनआरबी का जो ये इतने स्कीम्स आए हैं वो इसी वजह से थे, टू नॉट जस्ट टू स्ट्रेंथन द रूपी. इनका ये था टू गिव मोर कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स, ये भी था कि इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा

0: 2026 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण की सुविधा का विस्तार किया है और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कमजोर वर्गों को 3,49,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। सुषमा, इस तरह की जो खबर है, अगर आर्थिक मोर्चे के नजरिए से देखें तो क्या समझ सकते हैं इससे हम?
1: देखिए, मुझे असल में ये खबर अच्छी तरह से सुनाई नहीं। जी, थोड़ा सा आप संक्षेप में बता देंगे, क्या बोले आप?
0: जी, मैंने ये बोला कि वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तरफ से जारी किए गए हैं।
1: अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो ये जो क्रेडिट फ्लोज जो है, ये एकदम से बहुत बढ़ गए, और रीजनल रूरल बैंक से ये क्रेडिट फ्लोज बढ़े हुए हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव मेरे ख्याल डेवलपमेंट है, और यही एक इनफैक्ट काफी कमेंटेटर्स ने इसके ऊपर बात की है कि जो जो इस वक्त काफी इस वक्त ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं और शायद हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप ये क्रेडिट फ्लोज की तरफ देखें तो ये दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली हमारा जो इंडस्ट्रियल नहीं, इसका जो क्रेडिट पिकअप जो है वो काफी बढ़ गया है, और आने वाले दिनों में लगता है कि कंजम्पशन और बढ़ जाएगा।
2: Moving on, Defense Ministry has notified the 6 positive indigenization list, PIL, comprising 405 strategically important items with an estimated business potential of 3,070 crore rupees. These include 16 items of the Indian Coast Guard and 389 items of defense public sector undertakings. The list contains line replaceable units, subsystems, sub-assemblies, spares, components, and raw materials. The ministry said that this 6th PIL marks another step in the government's efforts to promote self-reliance in defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. It is expected to further expand opportunities for the Indian industry, strengthen the domestic defense manufacturing ecosystem, promote investment and innovation, and contribute to reducing dependence on imports. The ministry informed that the detailed list of items is also available on the Srijan portal, srijandefense.gov.in. Sushma, this is a step towards self-reliance in defense manufacturing and also towards making in India, giving it a big boost.
1: Yes, in fact, defense is an area of great progress in recent years. Not only are we manufacturing within the country, we are exporting also. So India has become a fairly large arms exporter. And of course, there have also, since the private sector is now being involved more and more, not just in defense, but in space. So you have so many private, public-private collaborations, as well as private collaborations with foreign companies, you know, which are now coming forward and setting up. So it's one of the big, I would say, success areas in the manufacturing sector.
0: आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी को अब पारंपरिक व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर साझा निवेश, सहयोगी नवाचार तथा सहभागी विकास और निर्माण की दिशा में आगे जाना चाहिए। वे आज मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अमरीकी कंपनियों को अपने राज्य में आमंत्रित करते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र को भारतीय और वैश्विक विकास के लिए एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करें। श्री फडणवीस ने राज्य की प्रतिभा, बुनियादी ढांचे, बाजारों, प्रौद्योगिकी और वैश्विक संपर्क बढ़ाने पर बल दिया। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाने के लक्ष्य का आपसी साझेदारी है, जो कि बहुत ही बेमिसाल क्षमताओं को दर्शाता है। सुषमा, आज ये जो बैठक हुई मुंबई में, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को अपने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?

0: देखिए ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हालांकि इस वक्त जो है हम सब लोग ये इंडो यूएस ट्रेड डील जो है इसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये जो है ये कोलैबोरेशन इन इंडस्ट्री ये भी उतना ही महत्व मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करे, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी अमेरिकी कंपनीज हैं, यहाँ बेस्ड हैं, यहाँ उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है, मैन्युफैक्चर क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये बढ़ना चाहिए। और इस वक्त जो अमेरिकी कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा निवेश चाइना में किया है, तो उतना तो वहां से अब वहां की जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो धीरे धीरे करके हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं चाहते हैं कि चीन में बेस्ड जो अमेरिकी कंपनीज यहाँ आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा मतलब थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वार्तालाप से काफी कुछ पैदा होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज फिर हमें बताएंगी कि क्या तकलीफें हैं वहां
1: जी
0: यहाँ आने के लिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं वो बता देंगे, और उससे ये जो प्रोसेसेस है स्ट्रीमलाइन हो सकती है।
1: सो सुषमा, बोथ द एम्बेसडर एंड द इंडियन डेलीगेट ऑल्सो सेड दैट टेकिंग इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाय 2030 रिफ्लेक्ट्स द अनमैच्ड पोटेंशियल of the partnership between the two countries. Now, does this reflect anything that will take place soon between the India-US trade deal? Is it
0: Well,
1: moving towards that?
0: we really can't say, because the Indo-US trade deal seems to be moving at a snail's pace. I mean, we have been waiting for it since last year, and we keep hearing from both sides that it's just on the verge of being concluded, and yet it doesn't come. And in the meantime, we have all these stories coming in about tariff imposition under Section 301, under the new Congress legislation about against countries which are importing buying oil from Russia. So these are things on which more clarity needs to be given by the American government. And it's only when these tariff barriers as well as non-tariff barriers are eased that we can think of raising trade to this kind of exponential level.
1: Moving on, the fifth edition of SEMICON India 2026 will be held from the 17th of next month in New Delhi. The three-day conference will witness the participation of more than 500 exhibitors and around 240 exhibiting companies from more than 40 countries. Prime Minister Narendra Modi will chair a roundtable conference with global CEOs from the United States, Japan, South Korea, Singapore, Germany, the Netherlands, and Malaysia. The theme of the fifth edition of the SEMICON India Conference is Silicon to Systems, Building the Ecosystems.
2: एशियाई शेयर बाजारों में आज जापान का निक्केई 225 2.5% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5% नीचे आ गया।
1: Global crude oil prices rose for the third consecutive session today amid uncertainty over a potential peace deal between the US and Iran. Brent crude was trading 0.5% up at $91.36 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.07 per barrel when reports last came in. Very quickly, Sushma, at what oil price does the situation become materially negative for India's inflation and external balances?
0: Well, it's difficult to say, but definitely $91 is not a comfortable level for India. I mean, we would prefer it to be in the range of, say, 70 or even up to $80. Above that is definitely not comfortable for a country which is importing such huge quantities of crude oil.
2: आगे बढ़ते हैं। सोना मामूली गिरावट के साथ आज 1,54,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1% से अधिक की तेजी के साथ 2,33,164 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। सुषमा, जिस तरह से गोल्ड की गिरावट और बढ़त का जो एक सिलसिला है, बहुत ही सीमित दायरे में हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा

0: उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, वही हाल चांदी का भी है। क्या लगता है इस मार्केट से आपको?
1: देखिए, गोल्ड का जो की जो आ, आ, इस वक्त वो गोल्ड गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, और इस वक्त की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह हैं, पिछले 2 सालों से गोल्ड की कीमत एकदम से बढ़ गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मेरे ख्याल इस वक्त थोड़ा सा प्लेटो पे आ गई है। साथ में चांदी का भी दाम बढ़ गया। चांदी को हम सेफ हेवन एसेट पहले नहीं कहते थे, पर मेरे ख्याल में अब ये भी बन गया है, क्योंकि इसकी भी खरीदारी ये सेफ हेवन एसेट माना जा रहा है इस वक्त। तो क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मेरे ख्याल अब ये थोड़े प्लेटो हो रहे हैं, लेकिन बहुत नीचे नहीं आएंगे।
0: Sushma, what is the one key message that you will give to the investors? Should they remain cautious, use the correction to accumulate quality stocks, or wait for greater clarity on crude, geopolitics, and global interest rates?
1: Well, I think number one, of course, they have to take a long-term view always, and the second is that you have to look at the quality of the company that
0: they
1: you
0: have
1: are
0: to be
1: investing
0: cautious,
1: in.
0: okay.
1: It may
0: जी सुषमा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू निखिल।
0: Thank you, Sushma, for being with us. And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic indices decline, Sensex drops nearly 500 points, Nifty settles below 24,200. Regional rural banks register over 10% rise in gross loan outstanding last year, and global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, good
2: night. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में

0: कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणियों का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मतदाता आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल से डिजिटल पहचान पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि करीब 12 लाख मतदान केंद्रों के लिए मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां प्रमुख देश है। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड लाल रेमस्यामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी आई अरुमेनायम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। BRICS nation has reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi yesterday said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate changes. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market standards. He said it can be done by educating farmers about various modern technical tools. The minister was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council of Agricultural Research, ICAR, in New Delhi today. The minister also administered the Saptadhara of Shakti pledge to officials of both ministries in the national capital. Mr. Chauhan said, through Shakti Ki Saptadhara, Prime Minister Narendra Modi has presented a clear roadmap for building a developed India. The Supreme Court has said that it would constitute a high-powered committee comprising retired Apex Court and High Court judges, a former DGP and an ex-CBI director to examine allegations of police excesses against tourists.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आप सभी के साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो आज पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है पूर्णिमा और आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और वो क्या कहते हैं ना कि ये जो मन के मौसम में समय के साथ बदलाव आता रहता है, या यूं कहें कि मन के मौसम का भीगना किसी दुख का संकेत नहीं होता, सिर्फ कभी कभी एक बहुत खूबसूरत सी फीलिंग, बहुत सुंदर अनुभूति के कारण भी मन के मौसम में थोड़ा उथल पुथल होने लग जाता है। जैसे किसी स्मृति में छिपी आत्मीयता का अचानक सामने आ जाना, किसी आवाज की पहचान भीतर तक उतर जाना, या फिर किसी पुराने प्रेम पत्र का एक वाक्य बहुत देर तक अगर साथ ठहर जाए, और तब ये जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो शब्दों से ज्यादा काम करने लग जाती हैं, और मन उन बातों को फील करने लग जाता है, या यूं कहें कि मन उन बातों को महसूस करने लग जाता है जिन्हें कभी नहीं कहा गया या जिन्हें शब्दों में ढाला ही नहीं गया, और मन ऐसे संबंधों को भी समझने लग जाता है, उनके भीतर छुपे हुए भावों को समझकर मन के मौसम में थोड़ा उथल पुथल होने लग जाता है, और भीतर की जो ये संवेदनाएं होती हैं, ये फीलिंग होती है, ये हमें सबसे ज्यादा मानवीय बनाने

का काम करती हैं और यही फीलिंग मन के मौसम को नम कर करके ये मन की जो जमीन है उनको उर्वर बनाती रहती है। सुन रहे हैं आप निशिगंधा और अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म तुमसा नहीं देखा से।

0: कहो भी हमसे लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है तीसरी कसम, आवाज है आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है फागुन।

थोड़ी देर पहले हम मन के जिस मौसम की बात कर रहे थे कि मन का मौसम जो है वो भी मौसमों की तरह बदलता रहता है। कभी कभी बिना कारण के भी मन के मौसम में नमी आ जाती है और कभी कभी ये मन का मौसम भी ना बड़ा रूखा सा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनकही बातें मन के भीतर परतों की तरह जमा होने लग जाती है। कोई पुराना प्रसंग याद आकर मन को भावुक भी कर देता है और कभी कभी बहुत छोटी सी बात भी मन को बहुत चोट पहुंचा जाती है। किसी अपने का बहुत छोटा सा नजरअंदाज कर देने वाला व्यवहार भी मन के अंदर घर बना लेता है। आंखें कारण खोजती हैं और मन अपने अर्थ को तलाश करता रहता है। और इस लड़ाई में, यूं कहें कि मन की इस लड़ाई में इंसान जो है ना वो क्या कोशिश करता है कि वो खुद को नॉर्मल दिखाने की यानी कि सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, पर वो होता सामान्य नहीं है। भीतर की संवेदनाएं जो हैं वो अंदर ही अंदर व्याकुल करती रहती हैं और मन हर बार एक जगह ठहर कर कारण तलाश करता रहता है। बीते हुए जो पल होते हैं वो वर्तमान को अफेक्टेड करने लग जाते हैं, उस पर अपना असर डालने लग जाते हैं और मन जो है वो उलझा पुलझा अपने ही प्रश्नों के बीच और न जाने कितने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लग जाता है। और यही बदलता मौसम जब कहीं से कोई और संवेदनाओं की एक छोटी सी बूंद लेकर भी मन के ऊपर एक नमी पैदा करता है तो वो रिश्ता हमें सबसे ज्यादा करीब लाता है। और ऐसे में मन जो है वो सारे प्रश्नों के उत्तर तलाश करना छोड़कर थोड़ी देर ठहर कर बैठ जाना चाहता है। तो मन की और भी बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक सुंदर सा गीत। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में हम बात कर रहे हैं मन के मौसम की। जनाब, ये जो मन का मौसम है ना, इसकी कहानी ऐसी है कि जितना लिखो जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि मन के मौसम को शब्दों में बांधना ये जीवन का सबसे मुश्किल टास्क है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मौसम के बहुत सारे रंग हैं, और ये जो सारे रंग हैं ना, ये रंग हमारी भावनाओं के रंग हैं, और भावनाएं शब्दों में बांधी जा सके ऐसा हो ही नहीं सकता। पर कहते हैं ना कि हम अपने जीने के अंदाज को बदलकर, सोचने के अंदाज को बदलकर, हम मन के मौसम को अपने अनुसार इसमें बहुत सारे रंग भर सकते हैं। बहुत पुराना एक सुंदर सी पंक्ति है, बहुत पुरानी, कि कहते हैं कि सांस लेने का अगर नाम है जीना साहिर, तो सांस लेने के भी अंदाज बदलते रहिए। जी हाँ, एक तरह से जीवन जीते जीते कई बार जीवन भी ना बेरंग सा महसूस होने लगता है। तो कहते हैं कि जीवन को बदलने के लिए या जीवन में और सारी रंगों को भरने के लिए हमारे मन के मौसम का भी बहुरंगी होना जरूरी है। संबंधों को एक बार फिर से जीवित करने की जरूरत होती है, कुछ बातों को इग्नोर करने की जरूरत होती है, और फिर जीवन जीने का सलीका बदलकर हम मन के मौसम को भी बहुरंगी बना सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। और कहते हैं कि एक पॉजिटिव सोच 100 दरवाजे खोलती है सफलता के, इसलिए अपनी सोच में पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, आवाज है मुकेश की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जिस तरह मन के भावनाओं को या मन के मौसम को शब्दों में बांधना, शब्दों में ढालना सबसे मुश्किल टास्क है, ठीक वैसे ही प्रेम को लिखना दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम। कहते हैं कि हमारी प्रीत का कुछ इस तरह बंधन हुआ होता, हमारी प्रीत का कुछ इस तरह बंधन हुआ होता, तुम्हारा मन हुआ होता, हमारा मन हुआ होता। बिठाकर नाव में तुझको नदी के पार पहुंचाता, बिठाकर नाव में तुझको नदी के पार पहुंचाता, जो तुम लहरे हुई होती और मैं साहिल हुआ होता, जो तुम लहरें हुई होती और मैं साहिल हुआ होता, हमारी प्रीत का कुछ इस तरह वंदन हुआ होता। वक्त आ चला है आपसे एक बार थोड़ी देर के लिए विदा लेने का। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, 2:10 पर कार्यक्रम होगा गीत सुहाने और हम होंगे आपके साथ। फिलहाल छोड़ जाते हैं एक गीत के साथ, फिल्म का नाम है राजा और रंक, आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान

पत्र के आधार पर कराया जाता है, करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। इस बीच वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना का उद्देश्य देश के ज्यादा से ज्यादा घरों तक साफ, सुरक्षित और किफायती पाइप्ड गैस पहुंचाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन के समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार हॉर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर एक मिसाइल से हमला हुआ। एक ईरानी अधिकारी ने कहा है कि जब तक अमरीका ईरान की शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक जलमार्ग दोबारा नहीं खुलेगा। FIH हॉकी विश्व कप में कल भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूँ मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन याद आंसू, मैं झरने पहाड़ आकाश भी लिख लेता हूं। मैं लिख लेता हूं वो तमाम रास्ते जो होकर गांव लोगों तक पहुंचते हैं। मैं लिख लेता हूं वो तमाम रास्ते जो होकर गांव लोगों तक पहुंचते हैं। मैं सब लिख लेता हूं, बस मेरी लिखावट में कभी घर नहीं आ पाया। बस मेरी लिखावट में कभी घर नहीं आ पाया। मैं सब लिख लेता हूं, मन याद आंसू, मैं झरने पहाड़ आकाश भी लिख लेता हूं। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है भूपिंदर और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है किनारा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है ज्वेल थिफ। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है आकाश दीप और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे। लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे। मैंने उसका नाम भी लिखना मुनासिब न समझा। मैंने उसका नाम भी लिखना मुनासिब न समझा। अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में और फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, गीत सुहाने की इस खूबसूरत महफिल में, फिल्म का नाम है बॉबी, आवाज है शैलेंद्र सिंह की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर और कार्यक्रम होगा रात सुरमई। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर और आवाज है मुकेश की। मिलते हैं 2:10 पर, कार्यक्रम होगा रात सुरमई।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। असम सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए असम राज्य बाल संरक्षण नीति 2026 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि इससे बच्चों की देखभाल से जुड़ी सरकारी और निजी संस्थानों में एक समान सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। कैबिनेट ने असम औद्योगिक संबंध नियम 2026 को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र 26 अगस्त

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई की खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सावन को आने दो और आवाज है यसुदास की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। एक बड़ी सुंदर सी बात है जीवन से जुड़ी हुई कि जीवन हर मोड़ पर उत्तर नहीं देता। वह पहले जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के साथ में जीना सिखाता है। अधूरेपन से अगर मन विचलित होने लगे तो पूर्णता का मूल वो कभी नहीं।

समझ पाएगा। पूर्णता के मूल को समझने के लिए हमें अधूरेपन के साथ भी जीना सीखना होगा। हर असमंजस के भीतर एक नई दृष्टि का द्वार खोल देता है ये जीवन। यदि हम उससे भागेंगे नहीं, तब एक दिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि कठिनाइयों ने रास्ता नहीं रोका था, वे बस हमें हमारे पहचान तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रही थी। और इंसान का सबसे सच्चा उत्तर उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, हर प्रश्न का जवाब हमें खुद के साथ खुद के अंदर ही मिलता है। तो है ना खूबसूरत सी बात। आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में और फिल्म का नाम है अर्पण।

0: बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
1: नहीं।
0: तो फिर गुमसुम क्यों हो? क्या बात है?
1: एक तो परदेश जा रहे हो, कहते हो एक साल क्या है, देखते देखते निकल जाएगा।
0: धत तेरे की, बस इतनी सी बात है?
1: छोड़ो।
0: देखो शोभा, यू नाराज मत हो, मैं तुम्हें रोज खत लिखा करूंगा और हर हफ्ते टेलीफोन भी करूंगा। सच पूछो शोभा, अगर तुम और तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में न होते तो मैं प्रदेश नहीं जा पाता। अब तो मुस्कुरा दो।
1: उफ़, ये सूट और टाई मेरी पसंद के हैं। जब भी किसी पार्टी में जाना इसे पहन के जाना, इसमें तुम बहुत हैंडसम लगते हो।
0: अच्छा, मान लो बहुत हैंडसम देखकर वहां की कोई लड़की फिदा हो गई
1: तो मैं समझूंगी वो लड़की मुझसे भी ज्यादा समझदार और अकलमंद है।
0: जलन नहीं होगी?
1: बिल्कुल नहीं। अगर तुमने उसे शादी भी कर ली तो भी मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें चाहती रहूंगी
0: शोभा।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनने जाएंगे आप सुनेंगे इस फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। दिन ढल जाता है और शाम आती है। शाम जब आती है तो कुछ अच्छी बातें भी अपने साथ लेके आती है। शाम कहती है कि जैसे दिन ढल जाता है वैसे ही जीवन में अगर दुख है तो दुख भी ढल जाएगा। हर परेशानी की भी एक शाम होती है और उसके बाद आती है उम्मीदों की सुबह। और जब हम अपने डर अपनी चिंता इस शाम के हवाले कर देते हैं तो फिर जैसे शाम ढल जाती है वैसे ही दुखों की भी शाम ढल ही जाती है। शाम कहती है कि जो उम्मीदों की सुबह होती है उसके लिए बड़े धैर्य से रात के प्रहर में गुजरना पड़ता है। यानी सुख और दुख के बीच का जो पहर होता है ना, वो थोड़ी बेचैनी, थोड़ी घबराहट और मन को बार बार बेचैन करने वाली वो रात होती है, वो पहर होता है। पर जब हम उस वक्त में ठहरना सीख लेते हैं, थमना सीख लेते हैं, तो वो वक्त भी गुजर जाता है, है ना? अच्छी सी बात। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है आप सभी से विदा लेने का। तो चलते चलते हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 3:10 पर मीना होंगी आपके साथ। फिलहाल छोड़ जाते हैं एक वादे के साथ, यानी फिर मिलने के वादे के साथ, और एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है अर्पण, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: देखिए हमारा फाइव स्टार होटल है, यहाँ पर हमेशा कैबरे के प्रोग्राम ही पसंद किए जाते हैं। सिर्फ एक बार हमने कवाली का प्रोग्राम रखा था ये, जो गेस्ट ने बिल्कुल पसंद नहीं किया।
1: मैनेजर साहब, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ आज तक हमारा एक प्रोग्राम नहीं हुआ जिसे देखकर देखने वाले खुद उठकर हमारे साथ नाचने नहीं लगे। हमारी पार्टी पंजाब की सबसे मशहूर पार्टी है।
0: नाम तो मैंने भी सुना है।
2: तो एक बार काम भी देख लीजिए ना। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब।
0: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग। ये मेरी बेटी है सोना।
0: ओह आई सी।
1: हमारे ट्रुप के हर तरह के प्रोग्राम को यही लीड करती है।
0: ओह प्लीज सिट डाउन मिस सोना।
2: शुक्रिया।
0: चाय?
2: जी नहीं शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीती। मैनेजर साहब एक प्रोग्राम करने का मौका दीजिए, उसके बाद देखिए आप हमें पूरा सीजन नहीं जाने देंगे, ठीक है ना बाबा?
0: ओके
1: धन्यवाद।
2: थैंक यू वेरी मच।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई जाएंगे। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमस्यामी और

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:11 और 7 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों जानते हैं, कुछ रिश्ते जिंदगी से दूर होकर भी दिल से दूर नहीं होते। समय कितना भी बदल जाए, कुछ यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। इसी तरह का आइए सुनते हैं अगले गीत में।

जिंदगी के सफर में बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा भी होता है जिसकी मौजूदगी पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देती है। ऐसी मोहब्बत हर किसी के हिस्से में नहीं आती, और जब आती है तो जिंदगी यादगार हो जाती है, बिल्कुल इस गीत की तरह।

दोस्तों, रात की खामोशी में कुछ यादें और भी गहरी हो जाती हैं। दिन भर हम खुद को कितना भी व्यस्त रखें, लेकिन रात होते ही किसी अपने की याद चुपके से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। कुछ लोग दूर होकर भी दिल के बहुत करीब रहते हैं, और उनकी याद आए तो बस यही शब्द दिल से निकलते हैं।

दोस्तों, किसी को अपने दिल में जगह देना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई खास शख्स दिल में बस जाए ना, तो उसकी मौजूदगी हर पल महसूस होती है। रात की शांत फिजा में जब दिल सबसे करीब होता है, आइए याद करें उस खूबसूरत एहसास को जब किसी को दिल में बैठाकर सारी दुनिया ही हसीन लगने लगती है।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:38:37। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, सावन की फुहारों में एक अलग ही मिठास होती है। रात की खामोशी, बाहर बरसती बूंदे और दिल में उठती किसी अपने की याद। लगता है जैसे मौसम भी चुपके चुपके दिल की बात कह रहा हो। कभी बारिश की बूंदे सिर्फ पानी नहीं होती, वो कुछ भूली बिसरी यादों को भी साथ ले आती है। आइए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत में।

दोस्तों, सावन की फुहारें जब दिल को छूती है ना, तो किसी खास की याद आना स्वाभाविक है। इसी मीठे इंतजार और प्यार भरे एहसास को सुनते हैं इस गीत में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार, 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में

0: सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई जाएंगे। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मई में यह अनुमान 6.7% था। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि अल नीनो मौसम और भू राजनीतिक चुनौतियां आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अहम है। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच गोल में पहले टेस्ट मैच में आज श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 84 रन पर 4 विकेट से आगे खेलेगा। भारत जीत से 6 विकेट दूर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. BRICS Nations has reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of 12th BRICS Environment Ministers' meeting in New Delhi yesterday said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Paris Agreement.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:11:05। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है कुछ नया करने का, खुद को फिर से पहचानने का। उम्र कोई भी हो, नई शुरुआत के लिए कोई तारीख तय नहीं होती। जब दिल कहे कि फिर से जीना है, तो कदम आगे बढ़ाइए।

दोस्तों कुछ गीत सिर्फ सुना ही नहीं देते बल्कि चेहरे पर मुस्कान भी ले आते हैं। किसी की अदा, किसी की चाल और उस पर दिल का यूं बेवजह खुश हो जाना, यही तो पुराने गीतों की खूबसूरती है। जिंदगी में हर वक्त गंभीर रहने की जरूरत नहीं, कभी कभी खूबसूरत पल को बस मुस्कुराकर महसूस भी करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो हमारी सोच पर पूरी तरह छा जाता है। फिर दिन हो या रात, काम हो या आराम, ख्याल बार बार उसी शख्स के पास जाता है। शायद मोहब्बत का असर ही कुछ ऐसा होता है। दिल में कोई बस जाए तो फिर कुछ और याद कहाँ रहता है।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। समय हो चुका है 4:29 और 20 सेकेंड। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, सुहाने सफर में कुछ ऐसे गीत होते हैं जो अपने साथ मुस्कुराहट और थोड़ी सी शरारत भी लेकर आते हैं। किसी की मीठी बोली, किसी की प्यारी सी अदा और किसी को देखते ही दिल का खिल उठना, मोहब्बत की शुरुआत अक्सर ऐसे ही मासूम एहसासों से होती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

सुबह के इस खूबसूरत वेला में एक नई शुरुआत का एहसास अपने मन में उतर आता है। जिंदगी में कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है, जैसे कली को फूल बनने में वक्त लगता है, लेकिन उस इंतजार में भी एक खूबसूरत उम्मीद छुपी होती है। इसलिए आज की सुबह खुद पर भरोसा रखिए, अपने सपनों को थोड़ा

सुबह की खूबसूरत शुरुआत अगर किसी प्यारी मुलाकात की याद के साथ हो तो पूरा दिन जैसे मुस्कुराने लगता है। जिंदगी में कुछ मुलाकात

सुबह की ताजा हवा में जब फूलों की खुशबू घुलती है ना, तो मन अपने आप किसी खास की याद से भर जाता है। फूल सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी लेकर आते हैं, और जब कोई फूलों के साथ अपने दिल की बात भेजे तो उस संदेश की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। तो चलिए सुनते हैं।

दोस्तों, सुबह का वक्त हमें एक खूबसूरत बात सिखाता है। सही संगत और अच्छे रिश्ते जिंदगी के मुश्किल पलों को भी आसान बना देते हैं। किसी अपने के साथ बिताए हुए कुछ पल कभी-कभी पूरे दिन की थकान मिटा देते हैं। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ में उन लोगों के लिए वक्त जरूर निकालिए जिनके साथ रहकर दिल को सुकून मिलता है। आइए इसी मीठे एहसास को सुनते हैं इस गीत में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विकासशील देशों की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल कहा कि भारत इंडोनेशिया को राहत

और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं और मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। आयोग ने कहा कि करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की निर्वाचन प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान युवाओं के लिए बैंकिंग शुरू करेंगे। नई दिल्ली में कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा एजेंसी ने नए कार्यालय में CISF की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिन के चेन्नई दौरे पर हैं। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मई में यह अनुमान 6.7% था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी और मजबूत करने पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टलफिन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 5 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनसे हार मान लेना जिंदगी नहीं, गिरकर संभलना और फिर आगे बढ़ना ही असली जीत है।

दोस्तों, जब दिल सच्चा होना तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपने मन की खुशी को मत रोकिए। कृष्ण के बंसी की तरह अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और पूरे विश्वास के साथ अपनी राह पर आगे बढ़िए, क्योंकि सच्चे रिश्ते और सच्ची भावनाएं किसी सफाई की मोहताज नहीं होती।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 5:20 और कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी। मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि हर परिस्थिति के साथ कदम मिलाकर चलते रहें। जो बीत गया उसे मुस्कुराकर जाने दीजिए और जो सामने है उसे पूरे दिल से अपनाइए, क्योंकि जिंदगी को बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे जीने का अंदाज, उसके जीने का अंदाज हमेशा हमारे हाथ में होता है।

हवाओं की तरह जिंदगी भी कभी शांत, कभी तेज और कभी अनजानी दिशा में बहती है। हमें बस इतना करना है कि हर बदलती हवा के साथ खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि बदलाव से घबराना नहीं, उसे अपनाकर आगे बढ़ना ही जिंदगी की खूबसूरती है।

दोस्ती वो रिश्ता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि वो अनकंडीशनल लव होता है, उसमें अपनापन होता है। अच्छे दोस्त हमारी खुशियों में मुस्कुराते हैं और मुश्किल वक्त में बिना कहे हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। जिंदगी में ऐसे रिश्तों की हमेशा कद्र करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर गुजरते पल के साथ और गहरी होती जाती है।